0: sad, jump are sad, grow are sad, happy sad, not it, horsey be sad, bole, sonny hall, sad, see a car.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नू
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नू
1: गुरु साहबान पीरां फकीरां दी धरती नू
0: ठंडियां छावां जियां मावां नू
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नू
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नू
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दियां छणकारां नू
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द गेस्ट एंड स्पॉन्सर्स आर सोली देयर्स एंड not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: ब्रजी बिलाल, ब्रजी कैसे हैं आप? चढ़दी कला?
1: चढ़दी कला जी, ऑल ग्रेट।
0: ओके ब्रजी, अज का मैसेज दिने आप सारे नूं, जिथे तुसीं अपनी बॉडी अपने शरीर की सेवा करवानी है वो सेवा ब्रिजी करता। $55 लगते हैं, बिचे का तेल हुंदा, बिचे की जगह हुंदी है, टॉवल्स हुंदे ने, इलैक्ट्रिसिटी बिल, अपनी सैलरी, किराए सब हुंदे ने, बड़ी रीजनेबल कीमत दे उत्ते तुहाडी सेवा करता। जिन्हें जिन्हें सेवा करवानी है, मुरथल वाले भलवाना मंगों की यह मालिश करता, बट कर दिंदा, बख्शा इस बंदे नूं। पेशे तो ये डिप्लो जिहड़े अपने सॉरी दूसरे आप क्या आपका एजुकेशन क्या था ब्रिजी?
1: जी मैम नॉटिकल इंजीनियरिंग की है जी।
0: हाँ इंजीनियर सिगा ते फिर शेफ भी रहा, पर आ जिहड़ा काम है ना इहनू बख्श हैगी आ। तुसी कोई भी किसी दे दर्द हैगा इस व्यक्ति नू कॉल करो, थोड़ा दर्द दूर कर दूगा। थोड़ी बॉडी नू आदत पै जानी है ब्रिजी को बार बार जाण दी, क्योंकि सुख मिलना तुहानू। ब्रिजी नंबर दो
1: 6476191369 6476191369
0: 6 6 1 3 13 ब्रिजी नू कॉल करो, अपियंगम शिरोधारा ते नाल नाल तुहानू जिहड़ा हैगा आपके पास तेल कौन सा होता है?
1: हमारे साथ मुरुवन्ना, शेरबला, धनोंदरम, ऑल काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक तेल है जी हमारे।
0: हाँ सो आयुर्वेदिक है, माल्टन गुरुद्वारे दे कोल है, स्लो रोड दे नाल, ते तुसी 6 6 1 3 13 6 4 7 6 1 9 1 3 6 9 ब्रिजी एक नंबर लो अच्छा सा, जो ना लोगों को याद रहे। आपका नंबर ना लोग मांगते बहुत हैं।
1: आपने
0: जैसे हमारे पास नहीं 4165183200 संतोष के पास है 4164734242 याद हो गया ना, ऐसा नंबर लीजिए 6 4 7 6 1 9 1 3 6 9 पे कॉल करो सारे 6 4 7 6 1 9 1 3 6 9। ब्रिजी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा साहब कैसा गीत है यार। ये गीत तो मेरे को मदहोश ही कर जाता है, होश नहीं करता, मदहोश कर जाता है। कैसा कमाल दा गीत है यार। तजिंदर जी तुसी तो कमाल कर दी अज भाई। हैलो,
1: हाँ जी, तुहाडा फेवरेट गाना आए हो मेरी जिंदगी में बहार बन के,
0: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
1: यस,
0: मेरे दिल मेरे दिल में यूं ही रहना, सिंह हरजीत का प्यार बन के।
1: बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट गाना है।
0: चलो बड़ी अच्छी गल है जी। मिसिज कपूर, थैंक यू वेरी मच थोड़ी कॉल दा जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस हो जी। प्रोग्राम पंजाबी सब, अकाल खान साहब क्या हाल चाल है आपके सर?
2: थैंक यू सो मच हरजीत जी, सब लिसनरों प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: आज मैंने आपके साथ बात करनी है, जिनके घर के इंटरनेट बहुत स्लो है उनके इंटरनेट फास्ट कर दें आप प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है आज आपके।
2: बिल्कुल सर, यही हमारा काम है और इसी में हम एक्सपर्ट हैं, 18 साल से यही काम कर रहे हैं हरजीत जी।
0: जी
2: तो बिल्कुल, कॉल करें लिसनर्स और उनको बेस्ट इंटरनेट सुपर फास्ट स्पीड के साथ दिलाएंगे और चीप प्राइस पे।
0: ठीक है
2: अरजीत जी, मेरे कॉल रॉजर्स दी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है इस वक्त, इसमें पैकेज है टीवी इंटरनेट एंड होम फोन का बहुत ही स्पेशल प्राइस पे, ओनली इंटरनेट भी स्पेशल प्रमोशन है 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे। रॉजर्स सेल फोन दी भी बहुत ही अमेजिंग ऑफर है मेरे को, कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिले दी, आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है। प्लीज कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, नंबर है 6478648647 8648000। 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्प्लाई हाँ, तुहाडा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे। नंबर अगेन 6478648000 6478648000।
0: बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच वकार खान साहब, और एक बार फिर से मैं आपका नंबर जरूर दूंगा 6478648000 पे आप अभी मिस्टर वकार खान के साथ बात कर सकते हैं रॉजर्स की अच्छी डील लेने के लिए। वकार खान द वन ऑन वन एंड ओनली वकार खान साहब बहुत लंबे अरसे से आपके लिए हाजिरी लगवाते हैं, और बहुत लंबे अरसे तो भी तुहाडे वास्ते बहुत लंबे लंबे समय तो रॉजर्स नाल एक काम कर रहे हैं। 6478648000 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम पंजाबी विरसा, बड़ा साहब मैं ना सोच ही पिया, तो देख रहे मैनू, मैं सोच ही पिया बड़ी देर का ना।
3: वैसे इन्ना एक्यूरेट दसा, बिल्कुल एक्यूरेट दसी थी,
0: नहीं आपा झूठ तो नहीं बोले, आपा नाल ही राइट, आपा नाल ही राइट दे गाना लाता
3: सी, ठीक है ना।
0: चलो जी, ये गीत तुसी लभ लिया, थैंक यू वेरी मच, और हुन कोई ना गिफ्ट तो देना ही पैना इन्हां नूं क्योंकि आपा प्रोमिस कीता भाई। चलो कोई गल नहीं जी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर होएगा तुहाडे वास्ते। यू आर लिसनिंग
4: ਬਾਈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਟਰੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ।
5: ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੇਖੋ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
6: ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲ, 17 ਸਟ੍ਰੈਥਨ ਐਵਨਿਊ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਬਿੱਲ ਸੇਖੋ 416-819-6000।
7: ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਗਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਨਲ ਕਾਰਵਾਸ਼ ਹੈਗਾ, 4 ਕੋਇਨ ਕਾਰਵਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਇਨ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਨੇ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, 1.2 ਏਕੜ ਲੋਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਥਰਾ ਲੇਕਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 6479884449। ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 6479884449, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
8: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
0: प्रोग्राम पंजाबी विरसा सुन रहे हो तुसीं और इस दे नाल नाल ही हसीब शेख साहब दे लाइन ते आ गया। शेख साहब की हाल चाल है सर? पिछले दिनों तो हसीब शेख साहब पंजाबी विरसा रेडियो दे मेहमान आ और पार्ट ऑफ फैमिली बने आ और मैं समझदा कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज माहिर लोग होंगे हर चीज का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बंदा होंगे ही होंगे जिवें पड्डा साहब साडे कोल बैठे आ बहुत सालों के स्पेशलिस्ट अपने फील्ड के इस तरह जिहड़े कि हसीब शेख साहब कमर्शियल प्रॉपर्टी के बड़े ब्रीकियां होंदियां कोई छोटी छोटी चीज़ां देखनियां जिहदे विच बहुत माहिर आ एक्सपर्ट्स आ हसीब शेख साहब की पूरी टीम। और हसीब शेख साहब अज की स्पैशल है क्या है वो दसो जरा सारे नूं सर।
9: थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन काइंड वर्ड्स हरजीत जी। अज असि अपने लिसनर्स वास्ते पहले तो असि गैस स्टेशन कुछ गल कर लेंगे फिर लो बजट इन्वेस्टमेंट का गल कर लेंगे। साडे कोल सर जी इस वक्त एसओ का गैस स्टेशन है विंडसर दे विच जिहदे च हाई स्पीड डीजल पंप ही ने दूसरे आटो कार पंप ही ने उस तो बाद ड्राइव थ्रू दे नाल के नामे स्टोर ही गए और उत्थे दी लोकल हाईवे दे उत्ते गावे इस लोकेशन नू कोई भी बंदा जिहड़ा कि इन्वेस्टर ही गावे जिन्हें ओनर ऑपरेटर बन के काम करना है $2,00,000 तो उत्ते दी एनुअल इनकम मिली है और इन कोई बंदा अपने इथों जान नहीं देगा और इहदी आस्किंग प्राइस $2,000,000 हैगी है। अजीत भाई क्योंकि तुहाडे प्रोग्राम ते बहुत ज्यादा आंदे ने रियल्टर्स उन्होंने नाल तुहाडी मेहरबानी तुसीं मैनूं भी मौका दिंदे हो असीं अपने लिसनर्स नूं दस दिंदे हां कि जिस वक्त जी तुसीं कमर्शियल बिजनेस लैणा हुंदा वे कई बंदे फोन करदे ने जी 10% ते हो जाएगा नहीं हुंदा सर 35% डाउन पेमेंट चाहीदी हुंदी है कोई भी कमर्शियल बिजनेस तुसीं लैणा हैगा वे।

तकरीबन समाप्ति वाल जा रहा है और किसी भी सज्जन ने कॉल बिजनेसमैन नूं लोड़ पैंदी है कि मेरी फोन करन दी तुसीं कॉल कर सकदे हो जी 6474481000 मेरा डायरेक्ट नंबर है 6474481000 ते इस नंबर तुसीं कॉल करके कोई भी इनक्वायरीज करनी होवे तुसीं डेफिनेटली साडे नाल संपर्क कर सकदे आ और तुहाडा अजीज़ सिंह हरजीत पंजाबी विरसा रेडियो वाला होस्ट हुण वई तैयारियां चलिए लंच करिए कदे जाके ते गुरु साहिब दा नाम जपिए वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32 55 80
2: मस्कोका अंदर डेढ़ एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2 एंड हाफ वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 bye bye

0: चांदी दिया चांदी।
1: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
2: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
1: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
2: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन गुरुद्वारे बाय प्लाजा के सिल्वर हट
1: 6473393521
2: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
1: सिल्वर हट
3: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
4: लेनियां होन या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
5: आखरी अपील
6: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी ता सोचन दी लोड़ नहीं इको नाम याद रखो लॉ ऑफ अमन शर्मा जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक 25 चेरी क्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन कॉल 905-913-2355 905-913-2355
7: आप पंजाबी आ गए मैं हूँ पंजाब मैं हूँ पंजाब
8: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
9: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
10: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है जो करनगे मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच
9: भैया ते कारा दे नाल नाल बसा ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने
10: कॉल करो 905-874-1800

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478